किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: ये है लाइका रेडियो। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल एट ओ protected.
1: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Leica Radio Network, broadcasting across the UK with Asian stations. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Raj Badden drives Leicester home with

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाव

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जोर ना जुगति छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापे जाए।

0: Gartner Utsavplus, Abhe Starplus.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम.

0: Nuz Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Ye hai
2: Laika Radio.
1: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटारिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.

0: Leica Radio.
1: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Function लगा हुआ है.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96, एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410. दैट्स 0208574 8410.
7: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
9: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call PJ 07957-477-330. Radio partner, Leica Radio.
11: Punjab the biggest tunes, not

0: Good morning. स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क का गोल्डन खजाना लाइका गोल्ड, और उस पर शुरू हो रहा है मनोरंजन प्रोग्राम। माय नेम इज रवि शर्मा। आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। बट बिफोर आई स्टार्ट माय प्रोग्राम, आई वांट टू थैंक ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ, ऑल द लिसनर्स वांट टू से थैंक यू काजल, यू विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज बुधवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 26 तारीख को, क्या संयोग है भाई, बताते हुए 26 का आंकड़ा दो बार आता है। तो आज भाई बुधवार का दिन, आप जानते हैं कि हम थोड़े से और एक्स्ट्रा शरारती हो जाते हैं और चाहते हैं कि भाई आपके होठों पर मुस्कुराहट तैरने लगे, कार्यक्रम सुनते हुए, गीत सुनते हुए, हमसे जुड़ते हुए। थोड़ी देर के लिए गंभीर होंगे, चिंतन में खबरें सुनाएंगे तब भी गंभीर रहेंगे, लेकिन बाकी समय में जहां मौका मिलेगा अपनी दुकान चलाएंगे, अपनी औकात में आएंगे। हमारे पास है हंसी के गोल गप्पे। यस, हंसी के गोल गप्पे हैं, खटाई है, मिठाई है, खुशी जी भर के खाने के लिए महफिल सजाई है। खरीदो एक खुशी और मुफ्त में दो साथ ले जाओ। बड़ी ही खास है कि ये सेल जो हमने लगाई है, हसीना आए तो वापस करेंगे आपके पैसे। यस, गारंटेड। और हमारे वास्ते किस काम की ये ऐसी कमाई है, पकाऊं मैं, परोसूं मैं, सफाई में, धुलाई में, मैं अक्सर सोचता हूं ये रब ने बेगम क्यों बनाई है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.

0: इसे कहते हैं भाई खुशी में सब साथ होते हैं, यार तेरे सब नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और बाद में शादी के बाद जो कुछ होता है उसमें कोई नहीं मेरे साथ देने आता, अकेले भुगतना पड़ता है। चढ़ जा बेटा घोड़ी पर, भली करेंगे राम, कर ले शादी, यार तेरे सब नाच रहे हैं। कुछ तो जो शादीशुदा वो भी नाच रहे होते हैं, कुंवारे भी नाच, भाई कुंवारों का तो क्या कहें, उनका तो अनुभव नहीं है कि क्या होना है आगे, पर शादीशुदा क्यों नाच रहे हैं? वो इसलिए नाच रहे हैं कि हम ही अकेले नहीं हैं जो फंसे हैं, ये भी बिरादरी में शामिल हो रहा है। भाई दो गीत आपने सुने और दोनों मेरी बीवी लाखों करोड़ों में एक है, इस गीत से हमने शुरुआत की थी। थोड़ा सा शरारतीपन भाई गीतों में बातों में आज सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा, हंसने हंसाने के लिए है, दिल से लगाने के लिए नहीं है। और मेरी बीवी लाखों करोड़ों में एक है, मैं चाहता हूँ बस यही लाइन सुने बीवियाँ, दूसरी लाइन ना सुने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India. याद दिला रहे हैं भाई, अच्छा रेट मिल रहा है आजकल, अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत में तो मौके का फायदा उठाइए। टुडेज रेट इज फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 129.4 रुपीज, 129 रुपए और 40 पैसे भारतीय करेंसी में। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स

0: your favourite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
1: You know how fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
3: Chupke, chupke raat din, aansu.
4: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
0: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
6: भाई इससे पहले कि हम आपको गीत सुनवाएं, गीत से पहले एक खबर परेशान कर रही है मुझे, तो मैं चाहता हूं कि खबर मुझे परेशान कर रही है तो फिर मैं आपको परेशान करूं, और किसको करूं. खबर ये है कि आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है यहाँ ब्रिटेन में, कल मना रहे हैं लोग. भाई रक्षाबंधन से पहले एक ज्वेलरी ब्रांड का विज्ञापन सोशल मीडिया पर विवाद की वजह बन गया है, कंट्रोवर्सी, झगड़ा. क्या है कि इस एडवर्टाइजमेंट में एक्ट्रेस कृति सेना नजर आ रही हैं. कुछ लोगों को उनके कपड़े पसंद नहीं आए तो कुछ को ये बात खटकी कि उन्होंने अपने कुत्ते को राखी बांधी. अब ये विज्ञापन, ये एडवर्टाइजमेंट ज्वेलरी ब्रांड जीवा का है. विवाद बढ़ता देख के कंपनी ने अपना विज्ञापन तो हटा लिया है, लेकिन साथ में सफाई दी कि भाई हम तो ये जो है प्रूव करना चाहते थे कि इंडियन कल्चर में परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान है, हम बहुत इज्जत करते हैं इस त्योहार की, लेकिन एक ब्रांड के रूप में हमने ये जो है वो साबित करना चाहा था कि हम अपने पालतू जानवरों को भी अपने परिवार के मेंबर्स की तरह प्यार करते हैं. पर कुछ लोगों को यह खटक गया कि क्या हम अपने भाइयों को कुत्ते की तरह प्यार करते हैं, कुत्ते की तरह देखते हैं.
7: अच्छा, अब है मोटा ना?
6: आपके पास कुत्ता है भाई, राखी बांधे तो उसका प्लीज दिखा के मत बांधिएगा. प्यार कीजिए, लेकिन वो विज्ञापन उन्होंने वापस ले लिया है. कुछ लोगों को और कुछ कुत्तों को भी बुरा लगा. क्यों भाई, कुत्तों को क्यों बुरा लगा?

0: बड़े गुस्से में कुत्ता। भाई कृति सेन ने राखी बांधी विज्ञापन था और राखी बांधी यानी भाई का दर्जा दिया, पर कुत्ते को नाराजगी इस बात की है कि हमें इंसानों के साथ बराबरी का दर्जा नहीं चाहिए, इंसान धोखेबाज हो सकते हैं, हम नहीं धोखेबाज, हम स्वामी भक्त होते हैं भाई, हमारी बराबरी इंसानों से मत करो।
1: मोटा ना कुत्ते से चोर भी डरता है ना दीदी?
0: इंसानों से नहीं डरता चोर।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Win with Jamin Foods.
2: बस दो दिन बाकी, रक्षाबंधन के खास पल बनाइए और भी यादगार. जैमिन फूड्स, रिश्तों में मिठास हर सेलिब्रेशन के साथ.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
4: लाइक अ रेडियो नेटवर्क. अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए. SCO शिखर सम्मेलन में पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट पेजिश्कियान की हो सकती है मुलाकात. पॉसिबिलिटी है. रूस में ईरान के एम्बेसडर काजमी जलाली ने बताया है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिश्कियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे. उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की मुलाकात किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन के दौरान होगी. काजमी जलाली के मुताबिक यह मसूद पेजिश्कियान के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन के साथ उनकी छठी मुलाकात होने जा रही है. भारत से आने वाली खबरों में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने H1AN1 स्वाइन फ्लू को लेकर के मेडिकल एडवाइजरी जारी की है. IMA के मुताबिक भारत में मॉनसून के दौरान H1AN1 स्वाइन फ्लू के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी देखी जा रही है. मोहन भागवत पर ममदानी का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है. बीजेपी कहती है कि कट्टर इस्लामी विचारधारा वाले हैं जोहरान. भाई जोहरान है न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और वहां चर्चा हो रही है RSS के चीफ मोहन जी की. और इसमें लिखा है कि कोलकाता में बीजेपी नेता किया घोष ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के RSS प्रमुख के प्रोग्राम का विरोध करने संबंधी रुख पर रिएक्ट किया है. घोष ने ममदानी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी विचारधारा कट्टर इस्लामी है. उन्होंने कहा कि ममदानी खुद को उदारवादी के रूप में पेश करते हैं लेकिन उनके अनुसार उनकी सोच बिल्कुल उल्टी है. न्यूयॉर्क में बाढ़ जैसे हालात हैं वो उनसे संभल नहीं रहे हैं और जहां RSS चीफ मोहन भागवत जा रहे हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं. आपको बता दें कि भाई RSS देश में ही नहीं विदेशों में भी जहां कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो मदद के लिए पहुंचते हैं. अमेरिका के रहने वाले हिंदू वहां 5,000 से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और वो इस्लामिस्ट हैं तो विरोध करेंगे ही, ये घोष ने कहा है. होर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने के लिए ईरान और ओमान के बीच बातचीत हुई है. ओमान के विदेश मंत्री की ईरान यात्रा के बाद दोनों मुल्कों ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक साझा बयान जारी किया है. बयान के मुताबिक दोनों देश होर्मुज स्ट्रेट में एक अस्थायी यानी टेम्परेरी साझा समुद्री गलियारा बनाने और इलाके से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए एक साझे प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं. पाकिस्तान से एक खबर आई है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 14 नवजात बच्चों की यानी जो अभी पैदा हुए थे शिशुओं की मौत हो गई है. अस्पताल के कार्यकारी डायरेक्टर इमरान सिकंदर ने बच्चों की मौत की पुष्टि की है. इस्लामाबाद जिला प्रशासन के मुताबिक आग अस्पताल के MCH वार्ड की तीसरी मंजिल पर लगी. आग लगने की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. बताया जा रहा है कि आग पर हालांकि तुरंत काबू पा लिया गया और बच्चों को ICU में ले जाया गया. घटना की जांच के लिए एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की अध्यक्षता में समिति में एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी आग लगने के कारणों की जाँच करेगी. पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आग लगने की घटना पर गहरा दुख जताया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से ट्रंप के माइंस हटाने के दावे पर ईरान का एक बयान आया है। ईरान के डेप्यूटी विदेश मंत्री काजिम गरीब अबैदी ने अमेरिका के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंगें पूरी तरह से हटा दी गई हैं। उन्होंने इसे केवल प्रचार के लिए बोला गया झूठ बताया है। दरअसल कल मंगलवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई माइंस को हटाने का दावा किया था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की ओर से यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भेजे गए संदेश के लिए आभार जताया है, थैंक यू बोला है भारत को। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें भारत की राष्ट्रपति की ओर से यूक्रेन के लोगों के लिए शुभकामनाएं पाकर बहुत खुशी हुई है। मशहूर अमेरिकी सिंगर डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। दुनिया के मशहूर कंट्री म्यूजिक सिंगर डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में देहांत हो गया। बताया जा रहा है कि एक बयान में कहा गया है कि कैंसर से बहादुरी से लड़ने के बाद डॉली ने आज अपने प्रियजनों की मौजूदगी में वेंडरबिल्ट इंग्राम कैंसर सेंटर में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। डॉली पार्टन के 6 दशक लंबे करियर में दुनिया भर में उनके 10 करोड़ से भी ज्यादा रिकॉर्ड बिके। उन्होंने 3000 से ज्यादा गाने लिखे और गाए थे। वो एक महान गायिका और गीतकारी नहीं थी बल्कि वो फिल्मों में भी नजर आईं। अपनी खास शैली के लिए वो जानी जाती थी और उन्होंने बहुत से लोगों का दिल जीता। तो सिंगर डॉली पार्टन को लाइका नेटवर्क परिवार की ओर से भी हार्दिक श्रद्धांजलि। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ अचानक रूस पहुंच गए हैं, क्या कारण हो सकता है? अमेरिकी साझेदार CBS के अनुसार रेडक्लिफ की यात्रा का कार्यक्रम पहले से घोषित नहीं था। अमेरिका और रूस ने अभी तक इस यात्रा की पुष्टि नहीं की है। यह भी नहीं बताया है कि वो किससे मिलने वाले हैं, किस काम के लिए गए हैं, लेकिन खबर आई है कि वो मॉस्को पहुंच गए हैं। वेल, ये थे आज के प्रमुख समाचार। क्रिकेट में अगर आपकी दिलचस्पी है तो बता दें भारत और श्रीलंका के बीच मैच बड़े दिलचस्प दौर में चल रहा है। भारत ने पहली इनिंग में 503 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और पारी डिक्लेयर कर दी थी। श्रीलंका ने जवाब में पहली इनिंग में 290 रन बनाए और फिर फॉलो ऑन किया गया तो फिर उन्होंने 199 रन बनाए हैं और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। स्कोर से हम आपको जोड़े रखेंगे। क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर आ रही है, उसे आगे चलकर आपको बताएंगे। फिलहाल आज के प्रमुख समाचार समाप्त होते हैं।
5: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
4: लौट आइए संगीत की दुनिया में, एंजॉय कीजिए म्यूजिक।

बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के लट।

0: पवित्र पापी फिल्म का गीत सुन रहे थे आप, प्रेम धवन की रचना थी। भाई हमारे गुजरात से हितेश भाई भेज रहे हैं, क्या अनुभव भेज रहे हैं, क्या लतीफा भेज रहे हैं। कहते हैं कि पति ने पत्नी को शादी में जाते जाने के समय पूछा क्या पहनूं, तो कहती है कि अपनी वो क्या कहते हैं उसको, चूहेबानी पहन लो। बोले पति कहता चूहेबानी क्या होती है, फिर उसने लाके दिखाई ये वाली पहन लो, कहती ये शेरवानी है मैडम, चूहेवानी नहीं है, कहती है शेरवानी तो ये शादी से पहले थी, पहन लो चुपचाप, अब ये चूहेवानी है।
1: This is Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और लीजिए साहब नोट कीजिए लम्फाई के रेट्स, अगर पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी, पाउंड का मूल्य 129.77 रुपीस, पाकिस्तानी रुपए 377.78, श्रीलंकन रुपए 447.23, बांग्लादेशी टके 167.51 और अफगान अफगानी 89.91 फॉर वन पाउंड।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of 109.1 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Leica Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96, परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून, टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208890880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlus and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-6333 or visit mantraholidays.co.uk.
6: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Biker Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
8: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
12: Four beers, please, garçon!
11: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और लीजिए साहब, रफी साहब और आशा भोसले जी की आवाजों में ये गीत हमें लेकर चलेगा 11 बजे की खबरों तक. उसके बाद होगा आज का चिंतन, ये समाचारों के बाद, यानी थॉट फॉर द डे, आज का विचार. एंजॉय द म्यूजिक फर्स्ट, जुड़े रहिएगा हमारे साथ.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड का मनोरंजन प्रोग्राम है। लाइका रेडियो मिडलैंड में भी आप हमें सुन रहे हैं और ऑनलाइन और वाइस थ्रू आउट दूसरे माध्यमों से जुड़े हैं आप हमारे साथ। आप सभी को रवि शर्मा की ओर से वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, व्हाट एवर द टाइम इज इन योर कंट्री। आप जानते हैं ये वो समय है जब हम आपके लिए चिंतन लाते हैं, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं अमेरिका से हमारे मित्र प्रोफेसर धनखड़ साहब का भेजा आलेख। भाई वो कहते हैं कि हम हमारे यहां तो जब आपका कार्यक्रम आता है तो बहुत अर्ली होता है, लेकिन कहते मैंने इंग्लैंड से गुजरते हुए आपके कार्यक्रम की थोड़ी झलक सुनी, तो भाई आज उन्होंने ये संकेत दिया कि आज आप एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व का जिक्र करना हमारी ओर से। भाई बात यह है कि बाली भाई फिल्मी हीरोज का जन्मदिन मनाते हैं और बहुत सारी फिल्मी बातें आपके लिए जुटा कर लाते हैं, और मैं ढूंढता हूं असली हीरोज को जिन्होंने जिंदगी में नाम तो कमाया, काम करके दिखाया, पर उतना नाम नहीं हुआ भाई, उतने मशहूर नहीं हुए, पर कुछ लोगों का नाम बोलूंगा तो आपको याद आ जाएंगे। पहले धन्यवाद ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप अमेरिका में रहते हुए हमारे साथ जुड़े हैं, और भी लोगों को जोड़िएगा। आज का चिंतन, आज के दिन 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था स्कोप्जे में, और मूल नाम उनका बड़ा मुश्किल था भाई, एन जेजी ऑक्सी बोजाक्री। बाद में उन्होंने अपना जीवन भारत में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू सर्व द पुअर्स एंड सिक और बीमार लोगों के लिए। मदर टेरेसा की आज जयंती है, लोग एक संत के रूप में उन्हें याद करते हैं। मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, मानव सेवा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए उन्हें 1979 में नोबल पीस प्राइज और 1980 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उनका निधन 5 सितंबर 1997 को हुआ, लेकिन आज 26 अगस्त को उनका जन्मदिन बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 26 अगस्त हमें विशेष रूप से याद दिलाता है कि सेवा करके आप बहुत सम्मान, बहुत नाम, बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं अपने लिए। किसी दुखी व्यक्ति को वक्त देना, उसकी बात सुनना, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना, ये भी एक सेवा है। अगर आप चाहें तो भाई मदर टेरेसा के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मदर टेरेसा ने अपना जीवन गरीबों, बीमार और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। हालांकि उनके कार्यों और संस्थाओं को लेकर समय समय पर सार्वजनिक बहस भी हुई और कुछ कुछ आलोचना भी हुई उनकी, लेकिन उनके काम की आप आलोचना नहीं कर सकते, जो सेवा कहलाता है काम। जब उनका जन्म हुआ 1910 में स्कोप्जे में हुआ था, तो उस समय वो इलाका ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, बल्कि सर्बिया के अधीन था। बाद में बहुत सारी पॉलिटिकल व्यवस्थाओं से गुजरते हुए आज उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी है वो। मदर टेरेसा मदर बाद में बनी भाई, वो संत बाद में बनी, लेकिन 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और आयरलैंड में लोरेटो एक संस्था को ज्वाइन किया। 1929 में वो हिंदुस्तान पहुंची, भारत में उन्होंने मुख्यतः कोलकाता के लोरेटो विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, मतलब टीचिंग का काम किया, वो टीचर बनी।
और बाद में सेंट मैरी स्कूल की वो हेड टीचर भी रही। उनका जीवन काफी सुरक्षित था, ठीक था, अच्छा जीवन जी रही थी। विद्यालय, विद्यार्थी और धार्मिक कम्युनिटी का साथ, रिस्पेक्ट मिल रही थी। पर उन्होंने सोचा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के बाहर जो गरीबी, बीमारी और उपेक्षा से जूझते लोग हैं, उनकी एक अलग दुनिया है, मुझे उनका हिस्सा बनना है। सड़कों पर भूखे बच्चे थे, बीमार लोग थे, अकेले बुजुर्ग थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें तत्काल सहायता की, मदद की और देखभाल की जरूरत थी। फिर आया वर्ष 1946। दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान मदर टेरेसा ने अपने जीवन के एक गहरे आध्यात्मिक आवाहन का एहसास किया। उन्होंने इसे बाद में कॉल विद इन अ कॉल कहा, जैसे अंदर से एक आवाज आई कि तुम किसी और काम के लिए दुनिया में आई हो, सेवा में जुट जाओ। उनके अनुसार ये पुकार, ये आवाज उन्हें गरीबों के बीच जाकर उनकी सेवा करने के लिए इंस्पायर कर रही थी। इस फैसले के बाद उन्होंने लॉरेटो यूनिवर्सिटी में अपने पुराने जिम्मेदारियों से अलग होकर गरीबों के बीच काम करने की इजाजत मांगी, तो 1948 में उन्हें ये इजाजत मिल गई। और उसके बाद सफेद साड़ी नीली किनारी वाली उसको पहन करके वो कोलकाता की बस्तियों में जाती, सेवा के काम करती। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बीमारों की देखभाल की, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। शुरुआत में तो उनके पास कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ा संस्थान नहीं था, ना ही ज्यादा सोर्सेज थे, पर उनके पास एक चीज थी, विश्वास और सेवा का संकल्प, दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए। 7 अक्टूबर 1950 को कोलकाता की आर्चडायसिस के स्तर पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी को एक धार्मिक संस्था मान लिया गया। बाद में इसे व्यापक चर्च मान्यता प्राप्त हुई और ये संस्था वंचित लोगों को, बीमारों को, अनाथों को सेवा प्रदान करने लगी। वहीं उनके कार्यों को लेकर उनकी हिमायतियों ने इसे गरिमापूर्ण देखभाल का प्रयास माना, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ सेवा। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी पद्धतियों पर सवाल भी उठाए, पर ऐसा होता है। समय के साथ साथ उनकी संस्था का कार्य भारत से बाहर भी फैल गया, दुनिया में उनका नाम हुआ और तभी उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल समिति के अनुसार ये सम्मान उन्हें गरीबों और पीड़ित लोगों की मदद तथा मानवीय सेवा के लिए दिया गया था। पर मदर टेरेसा की जिंदगी किसी पुरस्कार तक सीमित नहीं थी, उनकी सेवा का केंद्र था कि ऐसे जरूरतमंद लोगों के पास, दूर दूर तक बसे ऐसे लोगों के पास पहुंचना, भूखों को भोजन देना, बच्चों को एजुकेशन देना और किसी निराश व्यक्ति को यह एहसास दिलाना कि तुम अकेले नहीं हो। आइए आज मदर टेरेसा की जयंती पर श्रद्धा से उन्हें याद करें और उनसे प्रेरणा लें सेवा की।

0: कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, जो हर हालत में मुस्काए, भाई कठिनाई में मुस्काए, उसे इंसान कहते हैं। दरअसल बात यह है मेरे भाइयों कि इंसानियत जो है वो मानव सेवा, माधव सेवा है, भगवान की सेवा है, और इंसानियत ही दुनिया में एक ऐसा धर्म है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है और उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। आज का चिंतन डेडिकेटेड टू मदर टेरेसा, जिनकी आज जयंती है, जिनका आज जन्मदिन है। और रूथ हमें संदेश भेज रही है, कहती है वो बहुत अच्छी तरह समझ में तो नहीं आया, माई कुलीग्स कैन एक्सप्लेन इट टू मी बट आई लाइक द म्यूजिक यू प्लेड विद द चिंतन एंड आई एम इन रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इन स्टैनमोर एंड लिसनिंग टू योर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, कैरी ऑन वर्किंग एंड लिसनिंग बिकॉज वी आर वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग यू वर्किंग। भाई काम करते हुए आपके काम में रुकावट नहीं बनता है संगीत, आपके काम में सहायक बनता है संगीत, आप और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच रूथ, कीप लिसनिंग। ये भाई गीत जो है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, अपने आप में एक चिंतन है।
1: चिंतन चिंतन
0: आज के चिंतन के लिए आलेख अमेरिका से प्रोफेसर ओम प्रकाश धनखड़ ने वही भेजा, संकेत किया, उन्होंने याद दिलाया, और जो गीत हमने सुनवाया दैट वॉज इन हंसराज जी महाराज और साथियों की आवाजों में था। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.

0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिमाइंडिंग दैट इट्स गुड रेट टू सेंड मनी टू योर फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स इफ यू वांट टू। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके भारत में आप पैसे भिजवाने के लिए सेवाएं उनकी इस्तेमाल कीजिए, फायदा उठाइए। आज का रेट है 129.40 रुपए। यस, फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 129.4 रुपीज। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
6: लिस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th October लाइव फ्रॉम इंडिया। गरबा डांडिया म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड स्कूल लिस्टर। टिकट्स जस्ट 5 pounds दी स्टार्ट। बुक योर टिकट्स नाउ ऑन टिकट सोर्स और कॉल BJ 07957477330। रेडियो पार्टनर लाइक अ रेडियो।
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
7: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place.
10: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
10: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with Pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
14: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
15: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit HeartyHanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit HeartyHanks.com now.
16: Yeah, like a

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल टू गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू गोल टू गोल टू। बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स।

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. Listen back to your favorite shows by logging on to laikaradio.com and selecting Midlands or the mobile app. Laika Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at laikaradio.com and the Laika Radio mobile app.
1: Laika Radio.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Laika Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Laika Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
2: और बैक टू बैक संगीत सुनवाने से पहले भाई एक ये चिंतन के बारे में एक नहीं कई मैसेजेस आए हैं जो चिंतन की प्रशंसा में भेजे गए हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक हमारे लिसनर हैं साजिद लेस्टर में, और वो कह रहे हैं कि रवि भाई मैं मदर टेरेसा से मिला हूँ वसई नियर मुंबई। भाई वहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में विजिट करने आई, वो हॉस्पिटल्स में जाती थी और बीमारों से मिलती थी और कईयों की दवाई वगैरह की व्यवस्था भी करती थी। तो भाई आप बहुत लक्की हैं साजिद भाई, आप मदर टेरेसा से मिले हैं। और हमने सुना बहुत है उनके बारे में, चर्चा बहुत की है, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए कभी। तो भाई थैंक यू वेरी मच, कीप लिसनिंग एंड कीप राइटिंग एज वेल साजिद, थैंक यू वेरी मच। अगला गीत जो हम आपके नाम कर देते हैं। इसके अलावा भाई हमारी सलाव में रानी जी, जगदीश जी बुशी में, नीला चौधरी, अर्जन पम्मी सलाव में, विजय सटन में, राजीव पटेल जी आप कहाँ हैं, आप तो वहीं हैं मेरा ख्याल, राजीव पटेल हैं शायद मिल्टन कीन्स में होते हैं आप, हाँ। और वत्सला जी थैंक यू, गुरुदेव गांजा जी, जैस्मीन, शोभना राय, हिना भरत, गंगाराम, और हमारे भारत में जो हमें सुनते हैं सैनी साहब और हितेश जी, और प्रदीप सोलंकी ब्रैकनल में, और कराची में जहीर खान साहब, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक संगीत का ये पहला गीत।

0: और जब किसी की याद आती है तो भाई उससे मिलने का कोई बहाना चाहिए, कार्यक्रम में कोई कंपटीशन शामिल कराना चाहिए ताकि भाई वहां मुलाकात हो सके अगर आप जीत जाए तो। लेट मी टेल यू, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद एब्रोक्स इवेंट्स, एक बहुत बढ़िया भाई सुरीले गायक कलाकार है फाहद। मैं जर्मनी में भी उनसे मिला और यहाँ भी उनसे मुलाकात होती है, वो अपने हर कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं, बहुत सुरीले हैं, आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं, रफ़ी साहब को और किशोर कुमार को, और उनके साथ हैं मनीषा शर्मा। तो मेल फीमेल भाई अच्छा रंग जमाएंगे ये कलाकार म्यूजिशियंस के साथ। तो संडे 6 सितंबर को इनका शो है हैरो आर्ट सेंटर में 5 बजे से, नोट कर लीजिए, हैरो आर्ट सेंटर हैच एंड पिनर में संडे 6 सितंबर को शाम 5 बजे से इनका शो है। और उसके लिए भाई टिकट अगर आप खरीदना चाहें तो टिकट्स विल बी अवेलेबल एट हैरो आर्ट सेंटर वेबसाइट। अगर जीतना चाहते हैं तो 2 टिकट हम भाई दे सकते हैं, उसके लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। कंपटीशन कुछ इतना बड़ा मुश्किल सवाल नहीं होता है, खाली आपको एंट्री ही करनी है एक शब्द लिख करके, सेंड इन द वर्ड फाहद, ये उस कलाकार का नाम है जो बहुत सुरीले गायक हैं, FAHAD फाहद, FAHAD कैपिटल में लिख दीजिएगा ये नाम उनका लिख करके, और उसके बाद वही फिर वही जो सिलसिला आपका नाम फोन नंबर और ईमेल एड्रेस ये आप भेज दीजिए। 2 टिकट्स दाव पर लगे हैं एंड डोंट फॉरगेट यू कैन ऑल्सो परचेज टिकट्स फ्रॉम हैरो आर्ट सेंटर वेबसाइट। तो कंपटीशन शुरू हो रहा है अब, और भाई एंट्री मारना शुरू कीजिए और भेजिए फाहद, देन योर नेम फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ऑल द बेस्ट।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
0: मैं हमेशा सुरीले गायक कलाकारों से घिरा रहा हूं, उनके आसपास संपर्क में रहा हूं। अब एक और सुरीले गायक की आवाज सुनवाते हैं आपको, मंगल सिंह, मंगल भाई अनुराधा पोडवाल के साथ। सुनिए ये गीत और एंजॉय कीजिए।

0: बैक टू बैक संगीत आपने सुना भाई। एक बार फिर आपको याद दिला दूं मैं कि कंपटीशन शुरू हो चुका है। नंबर है 07424232323। अब शुरू हो जाइए, एंट्री मारिए और जीतने की कोशिश कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ।
1: दिस इज Leica रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि भाई कंपटीशन शुरू हो चुका है। फहद का शो है और ये 6 सितंबर संडे को है, हैरो आर्ट सेंटर में। शाम 5 बजे शुरू होगा, हैरो आर्ट सेंटर एट हेच एंड फिनर। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ फाहद लिखना है, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, और फिर इंतजार कीजिएगा नतीजे का। प्रोग्राम में आखिर में मैं विनर का नाम अनाउंस करूंगा। टिकट्स आपके वहीं पर मिलेंगे। वेन्यू पर मिलेंगे।

0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: रेट्स हम बता देते हैं भाई, वो दे रहे हैं एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 129.75 रुपीस, पाकिस्तानी 377.7, श्रीलंकन रुपए 447, बांग्लादेशी टके 167.47 और अफगानी 89.59.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: सोने का भाव इस समय चल रहा है 109.15 पाउंड्स पर ग्राम.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटारिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy. It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
9: T's and C's apply.

लोग मोहब्बत में दिल देते हैं, मैं दूंगा जान। मैं सच्ची मुची दे देगा, बता दूं आपको। मैं कई लोग मोहब्बत में जान देते, ये तो कई बार दे चुका है, हर हफ्ते जान देता है। जब भी कोई नई लड़की, सुंदर लड़की देखता है, ये जान दे देता है।

0: है तेरा इश्क मेरा।
1: बैक टू बैक संगीत, दो गीत हमने आपको सुनवाया भाई। आपको बता दूं कि ये जो गीत है गली ना छूटे यार की, आशिक मेरा भाई, ये मंगल सिंह और मोहम्मद अजीज की आवाजों में गीत था। और हमें तो भाई अपने भाई मंगल की आवाज जादू लगती है, एकदम नशा है संगीत में। ये संगीत ना होता तो दुनिया कितनी नीरस होती सोचते हैं। और भाई जब मंगल भाई का संदेश मिलता है कि मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो क्या कहूँ मैं, हृदय खेत खेत हो जाता है, बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाता है। थैंक यू मंगल भाई, कीप लिसनिंग। ये प्रोग्राम मनोरंजन का तीसरा और आखिरी दौर बहनों भाइयों शुरू हो गया है, और कॉम्पिटिशन तो पिछले घंटे में ही शुरू हो गया था। बहुत सारी एंट्रीज आ गई हैं, ध्यान

0: 2323 पर, 07424-23-23-23। ये नंबर तो आपको अब कंठस्थ हो चुका है भाई, जैसे हम बचपन में स्कूल में वो पहाड़े और गिनती याद किया करते थे ना, 7 × 7 = 7, 2 × 14 = 21, 7 × 7 = 21, 7 × 5 = 37, 7 × 6 = 42। कितना इंटेलिजेंट होता था मैं पहाड़े पता नहीं 25 तक 26 तक सारे याद कर लिए थे, 26 × 26, 26 × 2 = 52, 26 × 3 = 78। अब भी सुनकर देख लो, मैं टॉप करूंगा क्लास में, देखना। दिल करता है लौटा लाए कोई वो बचपन के दिन, वो क्लास के बेंच, वो छोटी छोटी शरारती। खैर साहब, कंपटीशन की बात हो रही थी, 07424-23-23-23 पर फहद लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखिएगा, आपकी एंट्री हो जाएगी कंपटीशन में। नतीजा अब से थोड़ी देर बाद हम आउट करेंगे और बताएंगे कि कौन जीता कौन जा रहा है शो देखने। 2 टिकट्स हेरवार्ड सेंटर में ये शो हो रहा है, नोट कर लीजिए, 6 सितंबर संडे को। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK दे रहे हैं इस समय भाई, अगर आप भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं, मौका है। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 129.4 रुपीज, 129.40 रुपए। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.state bank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ye hai Laika Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN।
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: I happen to happy valley.
8: It's back and it's bigger.
9: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
8: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
9: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
8: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
10: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11.
8: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963

0: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
1: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
2: Okay, help's on its way.
3: Grab my hand!
4: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
5: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
6: You're both on the same road. Same tarmac, same rules. Just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way, just like you. So use your mirrors. Check before you maneuver. And be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
7: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
8: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
9: और मैंने भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस सप्ताह कौन है आर्टिस्ट ऑफ द वीक. भाई उनकी बनाई धुनों पर बड़े प्यारे प्यारे गीत गूंज रहे हैं, हमारे स्टूडियो से पहुंच रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, आपके फोन पर, आपकी गाड़ी में. कौन है वो? अगर मैं कहूँ मिस्टर श्रीवास्तव तो नहीं पहचान पाएंगे. ये तो हमने ही कर दिया भाई, नाम छोटा और असली सही फिल्मों में जो इस्तेमाल हुआ है वही हमें बताना चाहिए. और वो नाम है चित्रगुप्त. चित्रगुप्त आनंद मिलिंद के पूज्य पिताश्री. भले ही दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी बनाई धुने कमाल कर रही है साहब. मुझे याद आता है अपना वो एक लिखा हुआ छोटा सा शेर मैंने लिखा था, किसी ने पूछा कि बताइए क्या सुनेंगे आप. तो भाई कव्वाली, गीत या शब्द? मैंने कहा था कि गीत, गजल, भजन, शब्द, कव्वाली भी अच्छी लगती है. और सुर में जब कोई देता है तो गाली भी अच्छी लगती है. ये तो प्रार्थना है साहब, प्रार्थना.

0: काल जयी रचना भाई कहते हैं कि कुछ गीत ऐसे हैं जो सदियां गुजर जाएं फिर भी भाई आप गुनगुनाती हैं, उन्हें सुनना चाहती हैं, दिस इज द प्रार्थना है। पर उनमें से एक चित्रगुप्त द्वारा संगीतबद्ध किया गया था फिल्म मैं चुप रहूंगी का संगीत, और उसी से हमने लिए प्रार्थना आपने सुनी। और बहनों भाइयों याद दिला दूं, कंपटीशन चल रहा है, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, और आपने फाहद लिखना, फाहद के शो का ये कंपटीशन है। दो टिकट्स मिलेंगे जो निकलेगा भाई हमें, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज हो रही हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं रैंडम जो है हम उसमें से चुनेंगे, ड्रॉ करके देखते हैं किसका नाम निकलता है। थोड़ी देर में रिजल्ट आउट होगा, जल्दी भेज दीजिए 07 4242323 पर एंट्री, फाहद लिखिए, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ऑल द बेस्ट।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
3: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: कर दो ना माफ, क्या जाता है तुम्हारा? कल रात वाली मुलाकात, रात वाली मुलाकात के लिए, हर बात के लिए बच्चे को माफ कर दो। अरे माफ कर दो, बच्चे की जान दोगी क्या?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Leica Radio.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: साउथ हॉल ट्रेवल का संदेश याद दिला रहे भाई, दुबई पर जो है उनकी एक्सपर्टीज आप जानते हैं। मैं तो एंजॉय कर चुका हूँ एक ट्रिप जो है दुबई का उनके माध्यम से। आपको बताऊं कि साउथ हॉल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कॉम्पिटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। कॉन्टेक्ट साउथ हॉल ट्रेवल टुडे ऑन 0208-574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th.
1: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at

0: mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio.
1: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
2: Maharaja Tours ke saath Nepal aur Bhutan ki adhyatmik yatra par chaliye. Apna sukoon dhoondiye. Himalay ki khoobsurat wadiyon, prachin monasteries, rang-birangi sanskriti aur yaadgar anubhavon ka maza lijiye. Sukoon, shanti aur prakriti ka adbhut sangam aapka intezaar kar raha hai. Aaj hi Maharaja Tours ke saath apni Nepal aur Bhutan yatra book कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
8: साउथ हॉल ट्रेवल. All protected.
9: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें. दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार. सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ.
10: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू. जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन.

0: गायक कलाकार मोहम्मद रफी और संगीतकार रवि। भाई ये दो दिग्गज जब मिलते हैं तो ऐसे ऐसे गीत बनते हैं बहन भाइयों। रफी साहब की आवाज में ये गीत आपने सुना, कौन सी फिल्म थी, कौन सी फिल्म से ये गीत? आई थिंक इट्स अमानत 1977 की फिल्म। और ऐसे ऐसे वो गीत और भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल कॉम्पिटिशन भाई धड़ल्ले से लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारी एंट्रीज हो गई हैं, लेकिन जो कंप्यूटर ने नाम चुन के दिया है, दिल थाम कर बैठिए फहद का शो देखने के लिए। कौन जा रहे हैं, दो टिकट किसको मिलने जा रहे हैं? भाई ये स्पष्ट कर दूं आपको कि टिकट्स आपके बॉक्स ऑफिस पर होंगे, आप वहां जा करके अपना नाम अपना फोन नंबर बताएंगे तो फिर भाई आपको टिकट्स दे दिए जाएंगे। और हेरवार्ड सेंटर में ये शो हो रहा है 6 सितंबर को, बहुत रंग जमेगा। तो लेट मी टेल यू द Winner's name after the break.
1: Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और लेम्फाई क्या रेट दे रहे हैं भाई, नोट कीजिए। 1 pound के बदले में इन डिफरेंट करेंसीज दे आर गिविंग लाइक 129.86 इन इंडियन करेंसी, 129.86 1 pound के बदले। पाकिस्तानी रुपए 378.29, श्रीलंकन रुपए 447.6, बांग्लादेशी टकाज 167.29 एंड अफगानी 89.9।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: And the gold is trading at the rate of 109, exactly 109 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: Like a radio.
4: Like our radio.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
10: Let
3: Western and Little Garba Stars, taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday, 17th October, bapore 1-4 at Avanti Field School, Leicester. 1-10 Varashna Kids Mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call Beaches 07957477330. Masti, music and a full-on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
10: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot Potato Shop, now at Foss Park.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: Leica Radio Network, broadcasting across the UK with Asian stations.

0: Up Plus, Abhis Top Plus. Next, Gold Afternoons with Bally Brambat on Leica Radio Midlands. Manoranjan with Ravi Sharma.
1: गाना है भाई, गाना है, लेकिन गाना बाद में आना है, पहले कंपटीशन में विनर का नाम बताना है। आपने बहुत सारी एंट्रीज कर दी है भाई, 07424-2323 पर इतने सारे पार्टिसिपेंट्स, लेकिन विनर एक, टिकट्स दो, और वो शो हो रहा है, कौन सा शो? ओ भाई, जिसमें फहद गाने जा रहे हैं, बड़ा सुरीला गायक कलाकार है। मुझसे जर्मनी में मिलने आया होटल में, अनफॉर्चुनेटली भाई हम होटल छोड़ चुके थे, हमारा भी वहां कार्यक्रम था, और फहद की शिकायत आई, फिर मिलते नहीं हो शर्मा जी, हम आपसे मिलने के लिए आपके होटल पहुंचे थे फ्रैंकफर्ट में। भाई इस बार मिलेंगे जरूर, और सिर्फ फहद से ही नहीं, आप में से जितने श्रोता भाई पहुंचेंगे वहां, मिल करके अच्छा लगेगा। तो लेट मी टेल यू द विनर्स नेम इज, you will get collect your tickets from the box office on 6th of September Fahad ki show mein, and the winner is, yaar bata bhi de kai ko latkar ya yaar, the winner is, oh bol bhi bhai kaun hai winner, winner ka naam hai Pinky Nayak। Congratulations Pinky, you got two tickets for Fahad show, and you must go and watch and enjoy the show।

0: छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई।

मुझे पता था मुझे घर से निकलवा के रहेगा ये। धन भाइयों, कल है राखी का त्योहार और रक्षाबंधन की आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई कुछ लोग कहेंगे 28 को है, भाई भारत में 28 को, लेकिन काल गणना के अनुसार यूके में शुरू हो जाएगा राखी का त्योहार कल ही। तो रक्षाबंधन मनाइए और कल के कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत गूंजेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि क्या बता दूं, चलने का समय हो गया है। बाली भाई विल बी इन द स्टूडियो आफ्टर 1 o'clock न्यूज। रवि शर्मा इज साइनिंग ऑफ। लिखा है भाग्य में तो मुकद्दर से जंग क्या, कर लूंगा सारी उम्र तेरा इंतजार मैं, और कलयुग में मेरे दिल की जरा सादगी तो देख, वादे पे तेरे करके चला एतबार मैं। निकल ले अबे, निकल ले पतली गली से।

करम करम, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, इन सब फिल्मों में कुकू कोली ने 11 साल तक राज कपूर जी के असिस्टेंट बनकर ट्रेनिंग ली एंड ही बिकेम अ ग्रेट फिल्म मेकर, अ ग्रेट थिंकर, अ ग्रेट टेक्नीशियन एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उनका असली नाम या तो अवतार कोली कहते थे लोग या तो संदेश कोली। अगर आप देखें तो 11 years with Raj Kapoor as Avtar Kohli or Sandesh Kohli. The films in which Kuku Kohli appeared on screen, jaise kaam seekh bhi rahe the, as an assistant, he also appeared on the screen as Sandesh Kohli in the films Bobby of 1973, Andhera in 1975, Dharam Karam in 1975. Then he came as Kuku, that's K-U-K-O-O, in film Do Shole, 1977. And then he came as Kuku, K-U-K-U, in film Samundar, 1986 ki film, as Kuku, K-U-K-U. Now, in filmon mein, wo screen pe nazar aaye the. Ab main aapko ek aisi journey pe le jata hoon, the three phases of Kuku Kohli. Kuku Kohli was born on 4th of June 1949 in Peshawar, which is in Pakistan, of course. And he passed away yesterday at Kokilaben Ambani Hospital on 25th of August, that is yesterday, 2026, in Mumbai, of a heart attack. People were shocked because he was very disciplined. He was a fitness fanatic and he was very careful in his food intakes, etc. To bhi ye kaise hua, log pooch rahe hain. Now, a great influence on the industry, because he was also the general secretary of IFTDA and IMPA, IMPPA. And he got married to Rita Kohli and had two children. One, Pooja. Pooja Kohli, she's a producer. And second daughter is Karishma, a filmmaker. She co-directed 2022 mein ek Netflix series jo thi, Fame Game. Usme she was a co-director. And she's also working away in films as a director. Abhi aaj subah UK ke 6:30 baje inka kriyakaran hua Oshiwara Crematorium mein. Oshiwara Crematorium mein subah 11 baje Mumbai time, jab maine TV pe dekha aur jab mujhe doston ke messages aane lage, main ro pada. क्योंकि कुकू जी को मैं अच्छी तरह जानता था. जिस कॉम्प्लेक्स में मैं रहता था, इट वॉज कॉल्ड संगम अपार्टमेंट्स, उसी कॉम्प्लेक्स में कुकू कोहली जी भी रहते थे. हर रोज आना जाना, हेलो हाय होना. और फिर एक बार मैं लंदन जा रहा था मुंबई से ऑन किंगफिशर एयरलाइंस, एंड उसी फ्लाइट में वो भी थे. एंड हमने इशारा किया कि खाने के बाद बार पे मिलते हैं. एक वो एयरलाइन जो थी किंग फिशर, उसकी एक स्पेशलिटी थी फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, क्लब क्लास कहो, बिजनेस क्लास कहो, देर वॉज अ बार, अ सेपरेट बार ऑन द प्लेन. तो हम दोनों बार पे मिले एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग. एंड हम बातें करते रहे जब तक एयर होस्टेस ने आके हमको कहा कि वी आर लैंडिंग इन टू हीथ्रो इन 20 minutes, could you please go back to your seats. तब हम हंस के बोले, पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया. That was the moment I will never forget with Kuku Kohli, यानी के अवतार Kohli, यानी के संदेश Kohli. The three phases of Kuku Kohli. The first phase, Raj Kapoor के साथ जो फिल्मों में असिस्टेंट बने. दूसरा phase, जहां राहुल रवा

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: द लाइका रेडियो नेटवर्क, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव.

0: गाना है फिल्म प्रेम रोग का। प्रेम रोग में कुकू कोहली ने, कुकू कोहली जी राज कपूर जी के असिस्टेंट थे और काम सीख भी रहे थे। दैट वॉज 1982 अंटिल ही गॉट इज बिग ब्रेक इन द 1990s। वी आर डूइंग थ्री फेजेस ऑफ कुकू कोहली हु पास्ड अवे यस्टरडे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3614, Indian rupees 129.75, Pakistani rupees 378.01, Afghanistanis 89.73, and Kenyan shillings 176.25, not forgetting Mauritian rupees 63.64.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is Leica. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £109.09.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
4: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Gem In Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gem In Foods, the authentic taste of India.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: जी हाँ, बेताब फिल्म में कुकू कोहली जी सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे विद राहुल रवाइल। ये फिल्म थी टेमिंग ऑफ द श्रू, दैट वाज एन इंग्लिश फिल्म, और उसमें से इसकी कहानी बनी थी। कहानी लिखी थी जावेद अख्तर जी ने, एंड सनी और अमृता दोनों की डेब्यू फिल्म थी। म्यूजिक बाय आरडी बर्मन।
1: Back to back hits across the Leica Radio Network.
0: और ये गाना था, फिल्म गाना है फिल्म अर्जुन का, जहाँ पे सनी डियोल और डिंपल कपाड़िया थे। 1985 की फिल्म, सेकेंड यूनिट डायरेक्टर कुकू कोहली।

Yes, the two films. We are doing a tribute of Kuku Kohli. Kuku Kohli, born with the name Avtar Kohli. He was on the big screens under the name of Sandesh Kohli when he acted in the films like Bobby. Chote mote role the, bade roles nahi the. Andhera, 1975, Dharam Karam. Phir he came as Kuku, K-U-K-O-O, Do Shole, 1977 ki film thi. And then he came as Kuku, K-U-K-U, on the big screen with a small role in the film Samundar, 1986 ki. Ab aapne do gaane jo sune, ek tha Phool aur Kaante, 1991. And again, dusri ek film thi, जो रिलीज हुई थी 1991 में ही. अब लोग डिबेट करना चाहते हैं कि कौन सी फिल्म पहली रिलीज हुई थी, वॉज इट फूल और कांटे या कोहराम. अभी कोहराम फिल्म हैड धर्मेंद्र जी और चंकी पांडे, एंड दैट फिल्म गॉट रिलीज ऑन 18th ऑफ अक्टूबर इन 1991. And then 1 month later, on 22nd of November, Phool aur Kaante release hui thi film. So the first film was Kohram. Lekin jabardast, super duper explosive hit jo thi, wo thi Phool aur Kaante. Uski bhi ek aisi ajab kahani hai, jo main abhi aapko batata hoon. Jisme Ajay Devgan ki debut hui thi with the Madhu. उन्होंने डायरेक्शन जब शुरू की, सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई. फिल्म सुहाग 1994 की, अगेन विद अजय देवगन एंड अक्षय कुमार एंड करिश्मा कपूर एंड नगमा, इन चारों को लेकर एक जबरदस्त, मतलब यू कैन से कमर्शियल पीक पे आ गए वो. सो एक्सप्लोसिव डेब्यू एंड कमर्शियल पीक वाज सुहाग 1994. उसके बाद उनकी फिल्म थी 1995 की विद अगेन जॉइनिंग अजय देवगन इन फिल्म हकीकत विद ताबू. एंड देन अनाड़ी नंबर वन, दैट वाज इन 1999 विद गोविंदा एंड रवीना टंडन.

0: अक्षय कुमार के पास कि हमारे पास एक फिल्म है आपके लिए एंड वी हैव टू शूट इन 40 डेज, क्योंकि कॉलेज की कहानी थी फूल और कांटे, तो इसमें उन्होंने SNDT कॉलेज जो है अंधेरी में, वो पूरा 40 दिन के लिए इन्होंने बुक किया हुआ था, और तब छुट्टियां थी कॉलेज में, इसलिए दे कुड यूज द कैंपस फॉर शूटिंग, तो 40 दिन उनको कंटिन्यूअस चाहिए थे। अक्षय कुमार जी के पास 40 दिन कंटिन्यूअस थे ही नहीं, डेट्स की क्लैशिंग के लिए की वजह से उन्होंने फिर फिल्म नहीं की। और फिर ये लोग गए अविनाश वधावन के पास, अविनाश वधावन जी को उन्होंने पूछा कि आप करेंगे। उन दिनों अविनाश वधावन वॉज अ वेरी वेरी बिजी हीरो और कंटिन्यूस फिल्में इनकी चलती रहती थी, सो उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि इसकी हीरोइन कौन है। स्क्रिप्ट तो उनको पसंद आई और उन्होंने कहा कि इट्स क्वाइट अ गुड फिल्म, लेकिन हीरोइन कौन है। बोले मधु। बोले कभी नाम मैंने सुना नहीं। बोले साउथ की हीरोइन है मधु। तो बोले कि अच्छा हीरोइन नहीं है, तो इसमें कुकु कोहली जी की 3 फिल्में इससे पहले कुछ अच्छी नहीं चली थी मार्केट में, तो बिकॉज दोज फिल्म्स डिड नॉट वर्क वेरी वेल, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ हेसिटेंस बाय द हीरोज टू एक्ट इन हिज डायरेक्शन, अंडर हिज डायरेक्शन। और यहाँ पे अविनाश वधावन वाज वर्किंग विद ऑफ कोर्स महेश भट्ट जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ, तो ही हैड टू थिंक ट्वाइस बिफोर ही कुड डू अ फिल्म जो अगर फ्लॉप हुई तो इनकी मार्केट गिर सकती थी। तो उन्होंने 2 बार सोचा और कहा कि मैं सोचता हूँ। उसके बाद रोहित वापस उसके पास गया अविनाश वधावन के पास और कहा कि प्लीज़ आप बोलो तो मैं साइनिंग अमाउंट ले आऊँ और 40 दिन हमें चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 40 दिन तो कंटिन्यूसली मैं आपको दे नहीं सकता, आई कैन गिव यू 2-3 weeks एंड देन 1 week एंड देन 1 week, अलग अलग टाइम्स पे, क्योंकि 40 दिन अगर मैं आपको दे दूंगा तो 2-3 प्रोड्यूसर्स नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सब साइन करके रखी है फिल्म में 3-4। तो ऑफकोर्स दिव्या भारती के साथ भी उनकी फिल्म जो चल रही थी, सो ड्यूरिंग दोज डेज ही वॉज सो बिजी, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मना तो किया, लेकिन बाद में देखो इतनी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई वो, एंड ही सेड आई रियली रिग्रेटेड इट, बट देन आई फेल्ट के एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई मेड द राइट डिसीजन, क्योंकि मेरे पास 40 दिन थे नहीं। सो इसी वजह से फिर सब हीरोज मना करने लगे, तो फिर ये फाइट मास्टर उस फिल्म के जो मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ फूल और कांटे, वो फाइट मास्टर थे वीरू देवगन। तो वीरू देवगन ने कहा कि मेरे बेटे को चांस दीजिए ना। तो उनका बेटा बोलता कि मैं कोई हीरो वीरो नहीं बनना चाहता, मैं तो आई एम वर्किंग एज अ फाइट मास्टर, मुझे मेरे डैडी की तरह फाइट मास्टर बनना है। तो वो ही यूज टू डू स्टंट्स एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि चलो हम ट्राई मारते हैं, आपके बेटे को हम लेते हैं इस फिल्म में। हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ द स्टंट्स, वो पहला सीन जो था जहाँ पे 2 पैर 2 बाइक्स के ऊपर, 1 पैर इधर और 1 पैर उधर, 2 बाइक्स के ऊपर जो एक एंट्री उसने मारी, वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट हुई, एंड देन स्लोली द पब्लिक स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू हिज स्टंट्स एंड हिज एक्टिंग, और आज एक सुपर डुपर हीरो बन गया वो अजय देवगन। सो दिस इज द स्टोरी एंड थैंक्स टू कुकु कोहली। Unfortunately, Kuku Kohli ji passed away yesterday at Dhirubhai Ambamen, Ambani, Dhirubhai Kokilaben, Dhirubhai Kokilaben Ambani Hospital mein. Kal, because of a heart attack, wo guzar gaye. A big shock for the industry. And we are doing the tribute with the 3rd phase of Kuku Kohli as a director.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And looking at the rates, we have

0: बहुत खूबसूरती से अलका याग्निक और कुमार सानू जी ने गाया, जैसे कि हर एक गाना एनीवे। हकीकत फिल्म 1995 की, दैट वाज डायरेक्टेड बाय कुकू कोली जी। ही पास्ड अवे यस्टरडे। ओम शांति।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: There you go. Films of Coco Coli. And this is Zulmi film, 1999 ki. Isme Akshay Kumar aur Twinkle Khanna, jab unki shaadi nahi hui thi, tab ki film hai. Uske baad they fell in love and rest is history. Next song, Samundar. Aapko batata hun.
1: Refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.
0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने फिल्म समुंदर में गाया था, जिसमें कुकू कोहली वॉज ऑन द बिग स्क्रीन इन अ स्मॉल रोल.

दो प्यारे प्यारे गाने और मुस्कुराता हुआ मेरा यार, वो मेरे दोस्त मधुर भंडारकर जी, जिनका बर्थडे है आज. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 26th August 1968, सो ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 58th बर्थडे टुडे. So if I was in Mumbai, we would definitely have been celebrating it somewhere. कि जब भी लंदन आते हैं तो हमेशा we go out for a meal or get togethers. जब मैंने पहली बार मैंने मुलाकात की, I didn't know who he was. किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था तो he said, Kebali, I want to take you to a place जहाँ पे मैंने एक फिल्म का शूटिंग किया है. तो मैंने कहा कि तुमने डायरेक्ट की है फिल्म? बोले हाँ, मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की है जो आने वाली है. अगर वो फिल्म हिट हो गई तो फिर तो मेरा काम बन जाएगा. तो मुझे कहा कि जहाँ पे शूटिंग हुआ था मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ. तो मैंने कहा ओके, लेट्स गो. सो हम इकट्ठा हुए एंड देन ही टुक मी टू अ मुजरा बार. अब मैंने कभी देखा नहीं था. ऑफ कोर्स फिल्मों में तो देखा हुआ था लेकिन

0: outdoors, you're sure to find one near you. Fresh flame-grilled chicken with six tasty flavours. It's Pepe-licious.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 पीस से शुरू. और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
0: One performer.
2: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover live UK tour 2026.
0: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
5: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
7: I happen to happy valley, feeling like a Diwali.
8: It's back and it's bigger.
0: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
8: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
0: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
8: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
9: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Punjab di biggest tunes.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ।
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
4: A Laika Radio Classic।

0: I mean, can you get any better than a bit of Asha Bhosle for your Wednesday afternoon? From the film that is Mere Yaar Ki Shaadi Hai. This is Sharara. This is Radio Wally's Roller Coaster. But it is Annika in charge today. Driving it on hump day. Hope you guys are having a good one.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49 सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99 टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96 एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.90 से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kgs for £10.99.
3: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
4: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव, एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स, फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट्स, फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर्स एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट? बी पार्ट ऑफ दुबईज ग्रोथ स्टोरी। कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंदन ऑफिस टुडे ऑन 02039635757 to arrange your meeting.
2: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.

0: What a beautiful, beautiful song from the 90s. That is taking you back all the way to 1991 with Nagmani. Of course, that is Anuradha Podwell and Shabir Kumar together. That was Mera Lonka Vacha. What a great track. Okay, so guess what? It is at that time where I say goodbye. Thank you so much for your company. Remember, I will be back tomorrow. But let me tell you a few things you can do in the meantime. Of course, we have got our Leica Extra podcast. We are on episode number 30, where we are talking about the British Asian Trust, and it is streaming on Spotify, Amazon, Apple, iHeart, Player, Podchaser, YouTube, of course, and Podbean. Okay, so I will be back tomorrow on Radio Wally's Roller Coaster, and then, of course, it is a weekend musty time. Have an amazing hub day, and I will see you tomorrow for Thursday.
1: Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon Stores पर Onam Sandhya के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ £13.49 Suhana Khaman Tokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99 Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96 S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक Everyday Grand.
6: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop now at Foss Park.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
8: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा Holidays. What's your travel mantra?

0: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
2: डेजर्ट सफारी
3: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.

0: Riker Radio.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel can take you there.
0: Southall Travel, Atoll Protected.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
0: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently. At radiocentre.org.
7: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
0: ये है लाइका गोल्ड

0: is Laika Radio. Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250376.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
2: डेजर्ट सफारी
3: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
3: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
0: साउथ हॉल ट्रेवल Or protected.
4: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
0: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Laika Radio.